दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न हो। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो। जात मह जो जोत मह जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहब सिर्फ सवाल योजन।

आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे पंडारा जिस तू देहे तिस क्या चारा नानक साचो सवारण हारा।

आसु गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रासु रहाओ हर जन के वड पाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यासु हर हर नाम मिले त्रिपतासा है मिल संगत गुण परगासु जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पासु जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवासु।

जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊड आवै सै कोसा किस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरण करिया सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल साध बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया राग आशा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा

सेवक जी क्या नानक जंत विचारा, तू घाटो घाट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना।

अनंता तेरे अनेक, तेरे अनेक पड़ है बहु सिमरत शाश्वत जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बस मोरो परिवार, सेवक सेखो सबे करतारा। मोर रक्षा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

हाथ दै मुझै उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हौ रक्षा। राख लेहो मोहे राख नहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

लक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशानै घट घट की पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निरलंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो असिख संगरो दोष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जी अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवा मरे

है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोह हरे हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया

करती रहे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सोख, मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते, काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तय सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे,

0: सतगुरु जी मेहर बख्श करन इलाही बन दे कीर्तन करदे आं परमात्मा दी सिफत सलाह दे शब्द गाउंदे आं इक नहीं अनेकां फुल्लां गलतियां दसों पासों होईयां हन सतगुरु फुल्लां बख्श के बाणी दा पाओ साडे हिरदयां तों सावण जिहड़े इंसान प्रभु दे गुण गाउंदे ने उहनां नूं पता उहनां नूं की मिलदा है पर जिहड़े नहीं गाउंदे उह गा के वेख लैण सतगुरु दी बाणी सत है हुण साडे गुरमुख प्यारे वाहिगुरु सिमरन नाल सानूं जोड़नगे सो आओ सतसंग जी थोड़ा समा होर इस तों उपरंत इलाही बाणी दे कीर्तन पाई हरप्रीत सिंह जी जथा करेगा जी प्यार नाल फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आओ सारे अपा रल मिल के नाम सेवन करिए वाहे कहना है अपनी आवाज नु आप सुनना है ते गुरु कहना है अपनी आवाज नु आप सुनना है अपनी अखां बंद करके सेवन करना आओ सारे कठे एक ही रस एक ही धुन दे विच आपां सेवन करना है वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ

हर चरण कवल मकरां दलोबित मनो अनंदन मोहि आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग काओ होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर

अरदास एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाये वार। श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर।

मुचा प्रभु कै सिमरन उदरे मुचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि सुमाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से धनवंते प्रभु को सिमरै से पदवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी।

प्रभ को सिमरहतन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बेहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंत कनेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे।

सिमरन कबहौ न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह सुमानी, प्रभ कै सिमरन न चले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभ कै सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांतना पार, सिमर है से जन जन को प्रभ मया अनंत जन सरनी पिया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेदो पाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचो कुंड जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन क्यों सगला कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया,

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट साखर सिमट ख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिर अनक प्रकार की बो जतना पुन दान हो मैं बो रतना शरीर कटाए हो मैं काराती वतने करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी है एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास पीसर थी वै अग्न माहे हुमत प्राण।

बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सत्संग जाका मिटे विभान आसको जो जाने नीचा सो गनिये सब ते उच्चा जाका मन हो सक करीना हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल सिर साजना सुख दुख जन समदृष्टि नानक पाप नहीं लेपा निर धन को धन तिरो नाओ निथावे को ना तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटाको देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उसको तुम ते हो नानक न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर

पत जाए अष्टपदी, दस वस्तु ले पाछय पावे, एक वस्त्रकार विखोट गवावे, एक पीना दे दस पीहर ले, तो मुड़ा को का करे, जिस ठाकुर सोना ही चारा, ताको कीजा सब नुस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा, जय जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। आगन साहु अपनी देरास, खात पीत बरते अंदोलास, अपनी अमान कछ बार साहु ले, अज्ञानी मर रोज करे, अपनी प्रतीता भी खोवे, बौरस का विश्वास न होवे, जिसकी बात से आगे राके, प्रभु की आगे माने, माते उसके चौगुन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनंत पाद माया के हेत, सर पर होत जान अनेत, बिर की छाया सुरंग लावे, ओह विनसह मन पछतावे, जो दिसे सो चालन हार, लप प्रयोत है अंध अंधार, बटाऊ सूजो लावे, नेह ताको हाथ न आवे केहि। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तानो तानो कुटुंब सुवाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज उन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पीठ हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपसु प्रकट गुमान, अस्त्र भक्त साध की शरण, नानक जप जप जीवे, हर के चरण, मिथ्या श्रवण परनंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है, मिथ्या नेत्र पीत पत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बेकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तानी पर उपकार, मिथ्या बासरित बेकार बिन बूझे, मिथ्या सब पहें।

साधजना की आचर्य कथा अष्टपदी साध कै संगम कूजल होत साध संगमल सगली खोत साध संग मिटै विमान साध संग प्रकट सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाई नाम रतन साध संगे को प्रजतन साध की महिमा वर्ण कौन प्राणे नाम साध शुभ प्रमाय सुमानी साध के संगे गोचर मिला साध संग सदा पर भोला साध संग आयुष पंचा साध संगम रस पंचा साध संग हो सब की रेन साध संग मनोहर बैन साध के संग न कत था साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नान प्रसो प्रसन्न साध संग सुन समीत साधु के संग महापुनीत साध संग के सुनि बैर साध संग न बिगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही होताप साध संत जस व्याप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साध संग न कबू थावै साध संग सदा सुख पावै साध संग साध संग बसै गोचर लहै साधु के संग आजर सहै साध के संग बसै थान ऊचै साधु के संग महल पहुँचै साध संग दृढ़ सब धर्म साध संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम दान नानक साधु के कुर्बान साध संग सब खुल उधार साध संग साध मित्रम विस्तार साधु के संग शोधन पावै जिस संत सब कुबर सावै साध संग

ऐसा जन न बिरता जावे पार ब्रह्म साधृत बसे नान कुदरै सात सुन रसै सात संग सुनो हर नाव सात संग हर के गुण गाओ साध संग नमंते विसरै सात संग सर पर नेत्रै साध संग लगे परम मीठा साधु के संकट का डीठा सात संग पया गय कारी सात संगत पई हमारी सात संग मिटे सब रोग नानक साध पीटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने चेता बख्यान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर साध शोभा का ना है अंत साध शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध शोभा मुचते मुची साध शोभा साध बने आई नान साध प्रपी

ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मतवर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी की उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेता अवत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंबु त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुसैन निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हो अजंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी इस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन भागी पाया ब्रह्म ज्ञानी को बल बजाया ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर

ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जायाद आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी तुम्हें कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी कुछ नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुख जो जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक और तार है जो अंतर नाम सर में पेख है भगवान निम्क निम्क ठाक नमस्कार है नानक अपरा सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाय रसना पारसो मन में प्रीत रंजन दर्शो पर त्रै रूप न पेखा नेत्र साध क्या संसंग हित करुण न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आप सुको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मन ते डराय इंद्री जित पंच दो रहत नान कोट मदे को ऐसा आपरस बैसन सोजे सुपर सुपर सन बिशन की माया ते हो भिन्न कर्म करत होवे ने कर्म तिस बैसन का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तने अंतर सिमन गोपाल सब प्रहोत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानक वैसन परमगत पावे भगौती भगवंत पद का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंते विंस सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साधु संग पापा मल खोवे तिस भगौती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कर नीत मंत ने अर्पै बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत को पावे सो पंड जो मन प्रभु दै राम नाम आत्म सो दै राम नाम सारस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण स्मृत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल चौह वर्ण को दे उपदेश नान कुछ पंड कुछ दा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो वरना में जपै को नाम जो जो जो जप जो जो जपै तिसकी गत होए सासंग पावे जन कोए कर कृपांतर और तारै पास प्रेत मुग्ध पात्र को तारै सर्व रोग का खुद नाम कल्याण रो मंगल गुण गाम काहू जुग कित न पाया धर्म नानक तिस मिले जिस

बृहस्पति कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पह तीर्थवासी, कई कोट मन भरमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्मत्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तन नाम त्यावे, नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय विमानी, कई कोट अंद ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभ्यगात्मन कोर, कई कोट पर दर गोहर, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रमाही, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते के जाने करता रचना, कई कोट सज्जति जोगी, कई कोट राजरस भोगी, कई कोट पात्र, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बृखन पजाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल है, कई कोट ससर सो नक्षत्र, कई कोट देव धर्म दर्शन छत्र, सगल समग्री अपने सो धार है, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान साधक, कई कोट वेद पुराण सिमर प्रसाद, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट ग्रीमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाकिन प्रसाद, कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगा, सब ते निर सब ते दूर, नानक आपलुप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासे, कई कोट नरसुर गुणवासे, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट भव जोनी फिरे, कई कोट बैठती खाहे, कई कोट गालित काले थक पाए, कई कोट कीर्तन वंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाण तै तै राखे नान, सब कुछ प्रभु कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संकतन लब लागी, कई कोट प्रभु को जनते आत्मै पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्राप्त आस तिनको मिलो प्रभु विनाश, कई कोट मांगे सत्संग पार मुंतन लागा, रंग जिनको हे आसो प्रसन्ना, अंतर जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुकीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदसदाय के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रत्य प्रम सुमाता, कांत न जाने कोई आपे आप नान प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास न होता तुम प्रकाश, कई कोट तत् के बेते स्थान हारे, को नित्रे, कई को नाम रस पीवे, अमर भय ससा दी जीवे, कई को नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सह समावे।

डर है। जैसा सत सदिष्टा अपने कार्य में आसुमाया, सोधत सोधत सोधत सीझिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब मूल नाम सो सुखम सोय स्थूल, न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलते आप ही करे। आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सकल में आप, थापो थापो अविनाशी, ना ही किश खंड, धारण धार ब्रह्मंड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपायता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुसुभा वंश, संसार उदृतन मंत, प्रभ के सेव सगल उदाहरण, प्रभ के सेव दुख विसार, ने आपे मिले कृपाल, गुर का सज पहे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, सुनु कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे बिसराम, नानक तिन पुरख कहो तम कर मान, जो किश करे सुप्रभ का रंग, सदा सदा वस्यार संग, सह सुभाय होवे सो होए, करण हार पछाण सोए, प्रभ का गजन मिठल गाना, जैसा सत ऐसा दृष्टाना, जिस त्यो जिस समाय सुमाय सुख।

सुख संद साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मने होन राओ, मनसा पूर्ण सरन जो जो कृपाया सोई होग, हरन भरन जाका नेत्र फोर, इसका मंत्र न जाने होर अंदरू मंगल सजा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राजोग में जोगी तप में तपी सर्गिस में भोगी, त्याए त्याए पक्का सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जंदी जिन दे जंदास नाम त्या वैसे, तेहो गुण में जागो प्रमाए जन्म रे फिर आवे जाए।

किमते आपे पाई सब घट दसके सब दसके ठाओ जब जब जीवे नान करनाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमृत वेद पुराण नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकास पाताल नाम के धारे सगला आकार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में है सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत कीर्ति प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय सुमाणी सत कर्म मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली से बुझाए किसे सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वा सत नानक गुर ते पाए सत बचन साधु उपदेश सत जन जाकृत प्रवेश सत नृत भूजा जे कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करण हार और न बुझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नाम जुद सुभावे सुवर्तिया।

परदाटा कहे अपने सेव के सर पर राखे अपने दास को दे वड़ाए अपने सेवक कहो नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे ताकि कदम ते कोई न लाके प्रभु के सेवक कहो को न पहुंचे।

नीकी गिरी में कल राख भस्म ग्रह लश्कर कोट लाके इसका शासन काट दे आवता को राख देकर हाथ मानस जतन करतब पात इसके करतब बिरते जात मारे न राख वरना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिय पी मृत्यु मंत्र त्रपिय नाम रतन जिन गुरु को पाया तिसके शब्द नाही दृष्ट आया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संघ

हाड़ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जान जन्मे पार ब्रह्म एक आपने कश परम सहस सियान पलिया न जाइए नानक ऐसा गुरवड भागी पाइए सबर दर्शन पीत पनीत परसत चन गत निर्मल रीत।

एक अंधकार दिव प्रकाश नान प्रमोद कहते नासे तद मायठान वर्ताय प्यादुक नाटे पाई जन्म बन के मिटेन देसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौजू का नर पौ हुए सगल व्याद मंत्री कह नसे

तू करे भली करनी सास सुबह पजहर की सरनी आनी क्यों पावी रोग न जाए रोग मुटे हरा उख दिलाही सर्वधन मेहर नाम दान जप नानक दर गए प्रवान मन प्रभु द्वार के नाय दैद स्थान त्या बैठाई ता कोई बिघन लागे कोई जाकर दे बसै हर सोई कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन सह पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रगास जित कर जाए बसै अबिनासी को नान काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म रह सुखा चुका चाय आवागमन मिटे प्रभु शिव आप त्याग सन गुरुदेव रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूट नहार सिमरत सात वेद विचारे हर की पकरो मन लाए मन पंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटुंबर बनता इन ते कहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो हो कवन छुटकार

प्रथमते आभो चरण कमल सो लागे प्रीत भक्त रो प्रभु किनत नीत एको एको टेको आधार नानक मंगे नाम प्रभु सार प्राभ की दृष्टि मा सुख होए हर सुपावे बिरला कोए जिन चा कैसे जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो पार परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे सन्यान सत्याग अंतर प्रकाश

ताकि उपमा कहीं ना जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु बख संद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व घटा गर्द व्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भजन के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पनीत, भगत पाए लावे मन हित। हम निर्गुनियारी नीचे अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान,

जब आकार एहो कछ ना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन सुमार तब बैर विरोध किस संकमार जब इसका वर्ण चेहन न जाप तब हर सुख किसे प्यात जब अपने आपा पार ब्रह्म तम का किसोत परम आपन खेले आवृति जानान करने हारन दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुत को किसको गनी जब एक हर अगमा पार तब नरसुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रसह सुपाए तब शिव सख्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कदर है आपन जल्द आप करने हार नानक खाकर अगमा पार बनासी सुख अपने आसन

तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचरा गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, आपने आप ही चर जा, नानक आपन रूप आप ही ओ पर जा, जय निर्मल पुरख।

जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल शीतल को केश जय जो स्वरूपी जो संग समावै ते किसे भूकम तृप्तावै करन करान करन हार नानक ते कनाय समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप जय जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय

जय कह एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप पतियारा तै कौन कथै कौन सुने हारा। बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस को आप है पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पापुन तै पई कहावत को नरको सुर्ग बंशावत।

सर्व श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सत्ता के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखर कोई न मारे सो मुआ इस मनो बिसारे इस तजवर का को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जो जाकर सब हाथ अंतर बा

आशीर्वादी सन संघ्यांतर प्रवटिठा ना प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री इस कट माही अनकरंजना न दृष्टाही नौ ने दे अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाधन तैनाद कह न जाइ अचर समाध

दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे है आधार।

सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाद वाजय सुन सुनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महाद कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेवकी आल जंजाल विकार दे रहते राम नाम सुरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सो

सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
1: ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਖਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗ ਸਹਿਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਅੱਖ ਹੈ ਮੰਗਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹਾਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਇਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉਂ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਾਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਾਏ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਾਏ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਾਏ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਾਏ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨਮੰਦ ਸੁਣਾਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਾਏ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਾਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਏ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਾਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਾਏ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਾਏ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸੁਣਾਏ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਾਏ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਨੈ ਮੋਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕਹਿ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पत सिंह प्रगट जाए, मन मग न चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मुख द्वार, मन परवर साधार, मन तरह तारी गुर सिख, मन नानक पवे ही न भेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान, पंचै सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जी को कह करै विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जी को बुझै हुवै सचियार, तबलै ऊपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिसते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे, असंख मलेश माल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। परिये हाथ पैर तान देह, पानी धोता है उतरो सोखे है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ तोए। परिये मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुनी पापी आखण नाहि, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वैण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माह कवन, जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुराण। थेत वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सर ठीक साजे आपे जाने सोई। केव करे आखा केव सालाही, क्यों वरने केव जाना, नानक आखण सब को आखै एक दो एक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई, पीता जाका होवै, नानक जी को आपो जाने, अगै गया ना सोहै। पातालां पाताल लख आगासां आगास, उड़क उड़क पाल थके, वेद कहने एक बात। सहस अठारह कहन कथे बा असुलु एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखे होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सलाही सलाही एति सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जेत समन होना भी सरा है अंत न सिखती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा हो वै कोय तेस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता करम लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए किते मंगह जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुट है बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोय जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जीतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के जिसनु बखसे सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवह अमूल लै जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीबाण अमूल तुल अमूल परवान अमूल बखसीस अमूल निशान अमूल करम अमूल फुरमान अमूल अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लेवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख ना सक है केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पाउन पानी बैसंत्र गावह राजा धर्म दुआरे गावह चेत गुप्त लेख जाना है लेख लेख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मान मोहन सुरगामा छुपयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खांड मंडल वर भंडार कर कर रखे थारे सेई तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता आपना जीव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाज है नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अबरा साद संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह पाद आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव ते सपाव तिव चलाव जिव होव फुरमाण ओ वेखै ओना नजर ना आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहो लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गिड़ा आखिय है एक नाम जगदीश इतरा हे पत पवड़िया चढ़िया हुए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरे पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गाया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखा हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गलां कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए तिथै घड़िया सूरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तापताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

पीत हैं। त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, आगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंद है, निर्बूज है, सूज है, अकाल है, अजार है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है,

करते हैं पूजन प्रयात छंद। नमो सर्वमाने सोमास्ति निदाने नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्व पौणे आनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे सोमास्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाते सोमास्ति विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अभिकिया परमी अपोगी अपोगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह नमो पूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमस्त स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्व प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृदकर्ता आदो उर्द अर्धं आगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोज पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं नशे दियपि दीनामं कामं समस्त पराजि समस्त स्थामं तेरा जोर चाकरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपि हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीस हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्वंग नाते नमस्वंग प्रमाते नमस्वं अगंजे नमस्वं अपंजे नमस्वं अकाले नमो सर्वदेय नमस्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपीसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्री प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकरं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांता प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञातं सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं पत्राण सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांता प्रसाद आदि रूपनाद मूर्त अजोन पुरख्या पार सर्वमांत्र मान देवा पेवाद उदार सर्वपाल सर्वकाल सर्वकोपन काल जतर तत्व राजे अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाव न जात जाकर रूप रंग नरेक आदि पुरख उदार मूर्त अजोन आदि सेख

से कर्म दृश्य धर्म सर्व प्रनाडय आन दंड बाडय चाचरी शांता प्रसाद गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पूजन प्रयाद शांत चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथी स अधिश अदर स अखिर स भगवती शांता प्रसाद के अचिज देश के अभिज पेश के अगंज कर्म के अभंज परम के अभिज लोक के अदित शोक के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजन प्रभा है के धर्मम तु जाए के ऐसा के धर्मम तु जाए के अशोक वर्ण के सर्वाया भरण कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि ब्रह्मं स्वरूप है कि अनुपम अनुप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रं विहीन है कि एक अधीन है।

कारण कुन धर के रोजी देहांत है के राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र कसाज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फीम है के आकलला में के सकला में के हुसनल वजू है तमामल रजू है के तमामल रजू है हमेशल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल से कस है गरीबल परस है बेलंदल मकान है जमीनल जमान है तमीजल तमाम है रजू अन धन है हरी फुल जी मेरे जाय के यकीन है अनेकल तरंग है अपीर है अपंग है अजी जनवाज है गनीमल खिराज है नृत स्वरूप है त्रमुत विभूत है प्रभूत प्रवाह है सुजोत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदि अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव लय काम है निर्वाद स्वरूप है अगाध अनूप है ओनाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभम सर्व भागे सुसर्वानरागे सर्वभक्त स्वरूप है अच्छे जय छूत है

अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निश्चिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेक है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चार प्रशांतता प्रसाद, सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वनर्ता सर्वकर्ता सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व कर्म सर्व धर्म सर्व युक्ता सर्व मुक्ता अरसावल शांता प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंग स्वरूपे अपंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाक शरीक है मित्तु अमेक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंता प्रसाद के जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है सुमस्त्र कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राज के दिर रहीम है के रोजी दहन देहांद है के राज के रहंद है करीमल कमाल है के हुसन जमाल है गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरीफुल सिकन है हरासल फिकन है कलंक प्रनास है सुमस्त निवास है अगंजुल गनीम है रजाय के यकीन है अगंजुल गनीम है रजाय को रहीम है सुमस्त जुबा है।

विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से हैं, खलखंड से हैं, परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी त्रित हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, आकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, निर्पनायक हैं, सर्वपायक हैं, पापंजन हैं, अरगंजन हैं, रिपतापन हैं, जब जापन हैं,

त्याग जहां दान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार विचार सार की धार पिछैया तोड़ देश मिलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ानक तोड़न हार सो बात नहीं चकचार रवैया साहिब श्री सबको श्री नायक जाच कने से दानव देव फिनंदन साचिर भूत भविक भवान जपेंगे जीव जते जल में तल में पल ही पल में सब थावत पेंगे पुन प्रतापन बाट जय तुन पापन के बपुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मार विंद्र गजंद गजिंद नरात अब जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक सुवंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पतंत फसे जन पास भरेंगे जे नर सरी पत के प्रसह भक्ति नर फिर न दे तरेंगे कहां प्यो जो दो लोचन मूद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहात फिर लिये सा समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास गयो बख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साज कहो सुन लियो सवै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू न लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं कह पुशाको शीस नवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया और जो सब जय सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं पुनराशस का काटा सीसा सरयसकेत जग के ईसा पौपन वृष गगन ते भई सविन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दा गरीब नवाजा अकल भवन के सृजन हारे दा जान मोले ओ बारे कव्यो वाज बेनती चौपई हमरे करो हाद रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट वै तुम का हो आप हादे मोहि बचाव हो सुखी वसै मोरो परवारा सेव सिख सवै कर तारा मोर रक्षा निज कर दे करिए सा बैन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तुर भई की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ की अवरना त्याऊ जो

जय भरिय मन काल कात्रासन भरिय हु जसदा हमारे पछान सरिय तू जो करो रचा राख लो मोह राखन हारे साहब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो प्रीत दर दस कंता काल पाई ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो तरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तुमासा जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सजगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आदंते कै उतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंच रसूला सब पर कृपा दिशकर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट के जाने जबद कर करा कर तारा प्रजा तरतव दे अपारा जबा कर कट हो कब हूं तुम मैं मित दे तरसव हूं जे ते वदन

आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलव कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया कह नानको आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोजन पावे पावे ता सोजन दे जिसन होर क्या करे विचारिया एक परम फूले फिरे दैद सिख नाम ला सुवारिया गुरु प्रसादी मन प्या निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आहो संत प्यारे आकत की करह कहानी अकत गेरी कित द्वारे पाईए तन मन धन सब सौ गुरु को हुक्म ने पाईए हुक्म नु गुरु केरा गाओ सची बाणी कह नान सुनो संतो कथियो आकत कहानी ए मन चंचला चतुराई कने न पाया चतुराई न पाया कने तू सुनवन मेरिया ए माया मोहनी जिने तो भरम भुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाया कुर्बान कीता तिसै बिटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई कने न पाया ए मन प्यारिया।

ऐसा काम बोले ना कि जज तंत पछोता है। सतगुरु का उपदेश सुन तू हो है तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तुस दसा सुमाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंत ना पाया किने तेरा अपना तू जाने जी अजन सब खेल तेरा क्या तू आख बखाने आखेता वेख सब तू है जिन जग तो पाया कह नान तुसदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया जी अजंत सब तुदो पाए एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप टुटा तिने अमृत गुरते पाया भगता की चाल निराली चालन राली भगता केरी विख मार्ग चलना लाभ लो अंकार तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिके वालो निकिए मार्ग जाना गुर प्रसाद जिन्या तजार वासना सुमानी कह नाम चाल भगता जुगो जुग निराली जो तू चलाए तो चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जे तू चलाए ते वह चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे

गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे तसनु सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ध्याए अंतरात्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुरु मने अवर न जाने कोई कह नाम सु संतोष सिख सन्मुख होए जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर ते कोई पुछो विकिया जाय अनेक जुने परम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तक गावो गुरु करी बाणी असर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना सुमानी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारग पानी कह नाम सदा गावे हो यही सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी तक कच्ची सतगुरु बाजोर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख बखाणी हर हर नित करे रसना कह कछु न जानी चित जिन कह लिया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सतगुरु बाज होर कच्ची बाणी गुर का शब्द तन है हीरे जित जड़ाओ शब्द तन जित मल्ला गाय हुआ सुमाओ सबसे तीमन मिलया सच्चे लाया पाओ आप ही रतन पिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द तन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप पाए कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख आप वेख गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दे दार दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां आप जी का नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां उतरवाईयां तां न्यारियां नाल चिरवाए। सिखी के सां सुवासा संग निभाही तिन्हां समूह सिंह सिंघणियां पुचंगियां। सिद्धकवाना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चित आवे। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियाए। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन निशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जोगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम देशां विदेशां विच सारे गुरु घरां दा सेवा संभाल दा प्रबंध अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो जी। हे गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है गरीब नवाज जी। अमृत वेले अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शे ने। आप जी दा कोटि कोटान शुकराना है धन्नवाद है जी। आप जी दे भाणे अंदर चार पहर रात सुख शांति नाल बतीत हुई है। चढ़िया चार पहर देण सुख शांति नाल बतीत करन। सतगुरु जी अमृत वेले आप जी दे दर कर दे टहलियां ने। आप जी दी पवित्र हजूरी विखे बैठ करके अमृतमयी बाणियां श्री सुखमनी साहेब जप जाप सवैये चौपी आनंद साहब जी दे पाठ कीते ने। अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करने। इसे तरह अपने संगतां नूं अपने दर घर दे नाल जोड़ी रखना। चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां घर परिवारां विच सुख शांति बनाई रखनी। सभना नूं अपने दरों घरों नाम दियां दातां सिखी सिदक भरोसा बख्शिश करना जी। सतगुरु जीओ आप जी दे दर घर दे सेवक सरदार रजिंदर सिंह जी सटोर दी लीज दी प्राप्ति वास्ते आप जी दे पवित्र चरणा कमलां विखे अरदास बेनती जोदड़ी करदे ने। सतगुरु कृपा करो सेवकां दियां मनोकामनावां पूरियां करो कारजां विच सफलता बख्शो।
ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕਉ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚ ਪਿਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ

तरण गगन नवखंड में है, जोत सब रूपी रहे हो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर। जेता सुमुंद सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे, दया करो

दैद सुबादो माए बिन गुर गाठ न छूटी भाई था के कर्म न कर्म कमाए एहो जग भरम पुला।

पूरी दर्शन दीज नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जा प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रक जीवत संतिया

जित कर्म सुख उपज भाई सो आत्म तत बिचारी। गुरु सवारी संगत जी बहुत प्यार विच रोजाना दे नेमी प्रेमी हाजरी भर दियो दूर नेड़े गुरुद्वारा साहिब सब माई भाई गुरसिख प्यार सहत रसना पवित्र करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध गुरु गरीब निवाज जुग हो जुग अटल दसा पातशाहिया दी जगदी जोत साहिब आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जेता शब्द सुरत तुन तेती जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना अवर न दूजा कहो माई साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान प्रेमी गुरसिख माई भाई समूह संगत गुरु की अपार अपार कृपा प्राप्त है। अमृत वेले तो बेअंती संगता ने सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सतगुरु जी दी रब्बी बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वह तुर दरगाह दी बाणी है जो साडे अंदर दे फिकरां नूं चिंतावां नूं झोरियां नूं काढ़ियां नूं दूर करन वास्ते सतगुरु जी दी अमृत बाणी समर्थ है। कोई शंका नहीं है। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। गुरु की अमृत बाणी सिख जदों पढ़दा है गुरु दी रहमत वरतदी है सतगुरु जी सदीव काल विखे सेवक दे अंग संग हो जांदे ने। इन्नी वड्डी रहमत कर जांदे ने सेवक नूं औखी घड़ी ना देखण दी। ये मेरे गुरु दा बिरद है। गुरु आप पात्र रख लैंदा है आप पढ़दे कज लैंदा है पर सतगुरां दे चरणा च अरदास है महाराज मेरा कोई बल नहीं है मेरा कोई जोर नहीं है तुसी आप ही डुबदे बेड़िया नूं बन्ने लाउण वास्ते समर्थ हो बल छुटकियो बंधन परे कशु न हो तो पाए कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। ता महाराज फिर कृपा करदे ने बल होवा बंधन छुटे सब किश होत उपाए नानक सब किश तुम रह हाथ में तुम ही होत सहाय। सब कुछ मेरे गुरु दे हाथ विच है प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जो करावे सो करना नानक दास तेरी सरना। पातशाह आप जी दी पावन बारगाह विच आए हां आप रहमत करो। सतगुरां दी अपार कृपा है अमृत वेले मुख वाक साहिब जिस वेले सतगुरु जी तख्तां ते प्रकाशमान हुंदे ने हुक्मनामा साहिब मुख वाक साहिब जी दी दात रोजाना आपां नूं प्राप्त हुंदी है। आसा जी की वार दे कीर्तन तो उपरंत रोजाना गुरु करदा नेम है फिर उस मुख वाक जी दी शब्द दी विचार हुंदी है। गुरु सवारी संगत जी अज दे अमृत बचन आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 635 अते 636 ते सतगुरां दा शब्द सुभाईमान है। गुरु सवारी संगत जी अज दे अमृत बचन पहले पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी दी मुबारक रसना तो दात प्राप्त होई है। सुरठ राग विच है अष्टपदियां दे रूप विच है तीन पदियां वाला शब्द है। धन गुरु नानक देव महाराज जी अपार अपार कृपा करदे ने। आओ सतगुरां दी ही बख्शिश द्वारे अज दे अमृत बचना नाल गुरु सवारी संगत जी सांझ पाउण दा जतन कर लईए।

0: सुनिहार सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।
1: सतनाम वाहिगुरु जी। पाम सुहावे जां तौ धिर जुल दे, सीस सुहावा चरणी।

खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल ना चुकई पाई अंतर मैल विकारी इन बिद डूबी माकुरी पाई ऊंडी सिर कै पारी दुरमत घणी विगूती पाई दूजै पाए खुआई

मन लियड़ा दीता, लिया ता दिया मान जिन स्यों, से सज्जन क्यों विसरह, जिन तिस आया हो हिरलिया, जी सेती गहर है सगल।

मिल साज करी जय, साज करी जय गुनहा केरी, छोड़ अवगण चली जय, पहरे पटंबर

साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया, पंच भू नायक आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सुवारिया, हम अवगणयारे तू सुन प्यारे, तुद भावै सच सोई, आवन जाना ना थी है, साची मत होई अंज

हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु। नानक कहे सुनहु जन भाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु। सुन हर गुण पीने सहज सुपाई,

नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम संभाले। मनमुख भगत करहै बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत

जुग चारी धन जे पवै बिन सतगुर सुहाग न हुई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर न कोई राम तिस बिन अवर न

अन दिनों शब्द रघु अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए हर गुण गाव हो नारी अन दिन भगत कर है गुरे आगे सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसिया घट अंतर से जन

पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावहु, सिमृत नाम दृढ़ाया।

अकाल पुरख ऐसा समुद्र है, सतगुरु दीन दयाल जिवें समुद्र विच रह के मछली अंत नहीं पा सकती, तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत ला। जह जह देखा तै तै तू तुझ ते निकसी फूट मार। इवें ही उस निरंकार दा आकार है। सतगुरु सच्चे पातशाह कह रहे ने वो हर दम हर पल सानू जीवन वास्ते कुछ ना कुछ बख्शिश करता है। जेडे कहंदे ने ना वे रब किथे है, 20-25 सेकंड लई अपनी नोज नू घुट के फड़ लो पता लग जाएगा श्वास देने वाला भी कोई है, वो साडे विच है असी ओदे विच। उस तो बगैर कुछ है ही नहीं। सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे, जे कोई बोलदा पिया है ना ओदे विच भी ओही बोलदा है, जे कोई देखदा पिया है ना ओदे विच भी ओही देखदा है। ओ गल वखरी है, किसी भी कमाई इड्डी महान हो जाए जह जह देखा तै तै तू है। ते सतगुरु कह रहे ने फिर वो जिहड़ी अवस्था है, वो जिहड़ी स्टेज है, जा पदवी कह लो जा कमाई कह लो, किसे विरले भी बनती है। सतगुरु कह रहे ने ओदे गुणा की कोई गिणती नहीं, जिदे जिवें साडे अवगुणा की कोई गिणती नहीं, पर ओदे गुण गायन करन नाल अवगुणा का भी नाश हो जाता है, मिट जाते ने। सचे पातशाह तेरे तो बगैर कुछ भी नहीं, तेरे तो बगैर कोई भी नहीं। असि शरीर का ही मान करी जाते हैं, शरीर नू बॉडी नू अज तक किसी ने नहीं रखिया, ओदी अंश ओदी बख्शिश हुई आत्मा ओदा हिस्सा कह लीए, वो कूच कर जाए ते सब कुछ मिट्टी बन जाता है। महाराज कह रहे ने मेरे साहिबा तेरे चोज बिना ये सब तेरी लीला है, पर इनू समझदा कोई है नहीं, ते बंदा कुछ होर समझण वास्ते आया सी पर समझे कुछ होर जाता।

सतगुरु जी साढ़े ते भी तरस करो, थोड़ी दया थोड़ी नदर थोड़िया बख्शिशा मिल जान, नाम दिया दाता दाना सिर दान नाम दान ते समझ लेना सब कुछ मिल गया। भुल चुक दी खिमा सब दी हाजरी परवान, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। आओ भाई साहब जी, भाई मनमोहन सिंह जी बड़े ही गुरु दे साजे होए निवाजे होए लंबेरी सेवा करन वाले, भाई रचपाल सिंह जी दे जत्थे नाल कीर्तन दियां हाजरियां भरणगे। असीस देव फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।